0: स्वरूप सा समझिए। इन सेवा प्रवान करना भुला चुका दिखी मां। आओ अगला प्रवान पैसा जी पास सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नू कथा कीर्तन सरवण करवा रहे सन भाई साहब भाई तरलोक सिंह जी श्री पौंटा साहब वाले। भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रहमत करन इस तरह अपने दर घर की सेवा लेंदे रहन। हुण समा होया है इतिहास की कथा का। साढ़े कोल अज ही पहुँचे ने बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी, जो काफ़ी समा पहला आप संगत के दर्शन दीदार करने लिए आया करते सन, पर हुण काफ़ी देर बाद सबब बनया है। भाई साहब नूं कैलगरी की समुची संगत वालों, प्रबंधकों वालों, समुची स्टाफ वालों जी आया नूं आखते हाँ और बेनती करते हाँ कि वह स्टेज उपर सुशोभित होण। चल रही पंथ प्रसिद्ध इतिहासक ग्रंथ प्राचीन पंथ प्रकाश, जां जिसनूं श्री गुरु पंथ प्रकाश भी आख्या जाता, उस पावन महान इतिहासक ग्रंथ की चल रही कथा नूं अगे तोरन। सो नाल ही बेनती है कि पंथ प्रसिद्ध विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी लुधियाने वाले, वो आप संगत के दर्शन करने लई 6 अते 7 सितंबर नूं साढ़े कोल पहुँच रहे ने। हर रोज़ भाई साहब का समा शाम 7 तो 8:30 बजे तक होया करेगा। आप जी ने दोनों दिन पहुँच के लाहे प्राप्त करने जी। आओ हुण कथा सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

निधान सदा भरपूर है, साध संगत अस्थान जगमग नूर है। गज के आखो सतनाम श्री संगणा नहीं, जे सतनाम बोलन लग्या नहीं संगणा, निंदिया वाले संग जाना है, गल्लां करन वाले संग जाना है। गज के आखो सतनाम साध संगत अस्थान जगमग नूर है, लख लख ससियर पान किरण ठरूर है, लख लख वेद पुराण कीर्तन चूर है, भगत वशल परवान चरना तूर है, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, गुरु की कृपा वरती है।

लड़क बंदरो ते बंदरी भई, लाड़े दी गल छड़ दे तू ते लाड़ी भी नहीं बनिया, बंदरी भई लाड़ी भी नहीं बनिया, औरत दे कोल दा तेरा वह भी खिताब नहीं देना बनता। तू कहना मैनू लाड़ा बन, बंदरो ते बंदरी भई, खासम कियो मल्हार, मल्हार नाम है मरटिया का, खासम ते मरटिया नू बनाई बैठा है, ते मरटिया तो बिना तू जुद जित नहीं सकदा, ते तू कदा गाज दीने दसा मैनू। जे ते तू कल्ले ने जंग युद्ध करके काबलिया नू कढ़िया होवे तां फिर ते तेनू कह दिए भी हां तू बंदरो आ, तू लड़ा आ, अपने आप ते ना ते इथों सरहंद जीती गई है, ना दिल्ली जीती गई है, ना लाहौर जीतिया गया है, ते फिर ता यही

की फतह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवे पातशाह धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई हुए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुखते।

0: जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोट महला पांजेवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा जम लज्जा कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अवनासी ता की सेवन बिरती जासी। आनंद कर है त्रिदासा जा पूर्ण हुई आसा। बिलावन महला पांजेवा। ताती वाह न लगई पार ब्रह्म शरण आई। क्यों गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई। राम नाम औकुंद दियाई कांदी मलाई रहाओ। राख लिए तें दक्कन हार सब व्याध मिटाई। कौ नानक कृपा भई प्रभै सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू न छोटा है निकट न जाइयो दूत। श्लोक महला पांजेवा। मन वह चित बो चित बने।

आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आवहु जाहो। तीर्थ ताप दया दात दान। जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता भाओ। अंतरगत तीरथ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ। सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन। कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहो। कवन जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण। वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत। माहो ना कोई जा करता सिर ठिकाओ साजे। आपे जाने सोई केव कर आखा। केव सा लाही क्यों वरनी केव जाना। नानक आखन सब को आखै। एक दू एक सियाना वड्डा साहिब। वड्डी नाई कीता जा का होवै। नानक जे को आपाओ जाने अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। सहस अठार है कहन कतेबा असलू एक धात। लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनास। नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप। सालाही सालाहे एति सुरत ना पाइया। नदिया अतै वाह पव है समुंद। ना जानिया है समुंद साह। सुल्तान गिरहा सेति माल तन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसर है। अंत ना सिफती कहन ना अंत। अंत ना करन देन ना अंत। अंत ना वेखन सुनन ना अंत। अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार। अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे। ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए। बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाओ। ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा होवै कोए। तिस ऊचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोध अपार। केतिया गणत नहीं विचार। केते खाप तुटह वेकार। केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे। केतिया दुख भूख सद मार। एह पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होए। होर आख ना सकै कोए। जे को खाए क आखन पाए। ओह जाने जितिया मुह खाए। आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के। जिसनो बख्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आव है अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबान। अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल पुरमान। अमुलो अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लेव लाए। आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े करह वखियान। आख है ब्रह्मे आख है इंद। आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध। आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव। आख है सोर नर मुन जन सेव। केते आख है आखन पाहे। केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करेहे ता आख ना सकहै केई के। जेवड भावै तेवड होए। नानक जाने साचा सोए। जे को

जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि सव कहियन केते गावन हारे गावह तुहन पौन पानी बह संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन से माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जेव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करहै बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध संयोग वे जोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो विदान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर विखै सिरजनहार

आद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजून आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मानतता हे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व बिसव रच्यो सर्व बिसव रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही बहु चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भर नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्तरै न मित्रै न परमंग न पितरै न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्तरै न मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा हैं के धर्मं तुजा हैं के आ सोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं

के एकै अधीन के रोजी रजाकै रहीम रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गौनै के सर्वतर पौनै के सर्वतर देसै के सर्वतर भेसै के सर्वतर राजै के सर्वतर साजै के सर्वतर दीनै के सर्वतर लीनै के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसै के सर्वतर भेसै के सर्वतर कालै के सर्वतर पालै के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजै के सर्वतर राजै के सर्वतर सोखै के सर्वतर पोखै के सर्वतर तराणै के सर्वतर प्राणै के सर्वतर देसै के सर्वतर भेसै के सर्वतर मान्यै सदैवं प्रधान्यै के सर्वतर जापिया के सर्वतर थापिया के सर्वतर भानै के सर्वतर मानै के सर्वतर इंद्रै के सर्वतर चंद्रै के सर्वं कलीमै के परमं फहीमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजू हैं तमामुल रजू हैं हमेसुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अपीद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अचिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अभंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं
ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕੰਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਬਿਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਨਾਮ ਗੁਣ ਗਣ ਮੁਦਾਮ ਅਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਣ ਪ੍ਰਨਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਣ ਗਣ ਪ੍ਰਨਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨ ਚਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਨਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨ ਛਿਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨ ਥਟ ਅਪਾਰ ਆ ਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੂਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਅਰ ਕਾਲੈ ਹੈ ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸਵੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥੱਪਾ ਥੱਪ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲ ਕਾਇਕ ਹੈ ਬਿਸਵੰ ਭਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਨਿਰਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ ਭਾਵ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो बिचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे
ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पात साहि दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दैरक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुझ जो करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो बेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदकरख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ
ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹੇ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਣ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੁਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਏਕੈਠਾ ਸਿਗਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰ ਭਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਅ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖਿਅ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਾਨ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੁਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰਿਹੋ ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਾਰਿਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੁਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਬ ਭਇ ਦਇਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅਡਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੁਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਯਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਾਉ ਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚਾਉ ਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹਿ ਸਹਸ ਪਨਿਜੈ ਅਰਧ ਸਹਸ ਪੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸਤੁਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनु होर क्या करहै वेचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहु संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर काओ हुकम मन्नै पाईऐ हुकम मन्नहो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संतहो कथहो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे
ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਏ ਆਖਹਿ ਤਾ ਵੇਖਹਿ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਆਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰਹੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆਹੋ ਤਾ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰਹੋ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆਹੋ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੀਆਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤਹੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ।
फिर मुक्त पाए लाग चरने सत गुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखहो विन सत गुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी। कहे नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे। जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सिवले वलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया। बोला है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिया। मनहु क्यों विसारिया ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावे। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिस नाओ अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्या परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिस नो सिर सौपिया विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है।

जा तू जग महाया, जिन हार तेरा रचन रचया सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्ब लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो हो कोई, हर बिन अवर ना देखो हो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर ना कोई, कहे नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए शरीर लाए। सुनहु सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया, होवा रसना रस समाणी। सच अलख विडाणी, ताकि गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवा हो। साचै सुनै नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया, गुरद्वारे लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया। कहे नानक हर प्यारै जियो, गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला, साचै घर गावहो, गावहो ता सोहिला घर साचै। जिथै सदा सच त्याव हे, सचो त्याव है जा तुद भाव है। गुरमुख जिना बुझाव हे, एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे। कह नानक सच सोहिला, सचै घर गाव हे। अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वे सूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गोर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया।

खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु सवारी संगत जी आओ प्रथम सारी संगत सतगुरु जी नू प्यार विच शीस चुका करके दोनों हाथ जोड़ करके प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ जी सब माई पाई आखो वाहिगुरु जी का

मन ता की ओट गही जरे चिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जरे। मन की मत त्याग हर जन हुकम बोझ सुख पाई रे जो प्रभु कर सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याई रे। कोट पतत उधर खिन में करते बार न लग रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावत स निवाज रे। सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे दिन दे तोट नहीं तिस करते पूर रहो रतनागर रे जाचक जाच नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे। नानक दास ताकी सरनाई जाते ब्रिथा ना कोई रे जुग हो जुग अटल सचे पातशाह। दसा पातशाहियां दी जगदी जोत समर्थ गुरु आद गुरु ग्रंथ साहिब जी प्यार सहित आखो भाई आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई। गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरु जी दा खास रूप सुंदर स्वरूप साध संगत जी बहुत वड्डियां भागां वाले हो गुरु की अपार अपार कृपा प्राप्त हो रही है।

सवारी संगत जी जन्ने तुसीं प्यार वाले गुरसिख सहबां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो। आओ सारी संगत रल मिल करके कलगीधर पातशाह गरीब नवाज जी की बख्शी हुई गुरु फतेह नाल सांझ पावांगे। सारी संगत दोनों हाथ जोड़ करके बुलंद आवाज विच आख्या करो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सब ते ऊच जाका दरबार सदा सदा ताको जोहार देंदे तोट नहीं भंडार खिन मैं थाप उथापन हार जाका हुक्म न मिटै कोए सिर पातशाह साचा सोए।

सके गत नहीं जानी करत विकार विषयां विकारां नूं भोग के ते हाथ ते हाथ मारदा ताड़ी मारदा जोर दी कहिंदा जिहो जे मैं कम कीते हो जे कीते ही नहीं कोई भी ना करे हो जे विकारां नूं भोग के कहिंदा मैं बहुत मल्लां मार लिया ने करत विकार दो कर झारत राम रतन जो रतन पदार्थ नाम दा है रतना दी ते मुल पैंदा है दसो शरीर दा कोई मुल पवेगा कदे भी नहीं पैंदा नाम दा कदे मुल नहीं पैंदा रतन अमोल तिल मात्र भी गुरु दे शब्द नूं अंदर ग्रहण नहीं करदा करत बेकार दो कर झारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत जिंदगी किवें लंघदी जे भरण ओखण संग औद बिहाणी पेट भर लिया ते सौ लिया ते घराड़े मार ले जां गल्लां बातां कर लईआं इहदे विच सवास निकल जांदे ने भरण पोखण इहनूं पालन पोषण विच ही लग्गा रहिंदा है भरण पोखण संग इहदे नाल औद औद हांजी औद औद की है उमर जिहड़ी रब ने दित्ती है सानूं नहीं पता किन्ने सवास बख्शे ने उह ते मेरे वाहिगुरू नूं पता है भरण पोखण संग औद बिहाणी जय जगदीश की गत नहीं जाणी जो जुगो जुग अटल है गुरु शब्द है ओदी महिमा नूं जाणदा नहीं है पर तुसी वड्डियां भागां वाले हो गुरु प्यारे गुरु सवारे माई भाई जी दोरों नेड़ियों चल के सतगुरु जी दी पावन बारगाह विच खालसा जी सज बैठे हो जिथे तुसी वाणी दा आनंद माणदे उत्थे बहुत प्यारे गुरसिख इदां दीआं बख्शियां होईआं रूहां जरूर बार जरूर ने जिहड़े अपने घरां विच वी अमृत बाणी दा आनंद प्राप्त करदे ने ओह वी वड्डियां भागां वाले ने गुरु सवारी संगत जी गुरु घर दे नेम मुताबक जिवें सवेर दी कथा जिहड़ी है लड़ीवार हुंदी है दुपहर दी जो कथा चलदी है तुसीं विद्वानां पासों सरवण करदे आ रहे हो श्रीमान सत्कारयोग भाई साहब जी भाई गुरुदास साहब जी धन गुरु अमरदास महाराज जी दे भतीजे सके भतीजे भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी दे जिहड़े कबित सवैये ने उन्हां दी विचार चलदी है और तुहाडी सुरत विच इह वी बोल जरूरी है रात दे समय जो शामां नूं कथा हुंदी है सत्कार योग भाई साहब जी भाई महताब सिंह जी तिन्हां दे सपुत्र भाई राय सिंह जी तां तिन्हां दे सपुत्र भाई रतन सिंह जी भंगू जो साडा अपना इतिहास है ओहदी विचार जरूर बर जरूर हुंदी है तुसीं उदों वी हाजरियां भरदे हो जो अज दी विचार है दुपहर वाला शब्द है भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बहुत ही प्यार विच कबित बख्शिया है अज दे अमृत बचना विच भाई साहब जी ने एक कीड़ी दा दृष्टांत दिता है जिहदियां अठ लैणा ने ते चार ओहदे वख वख दृष्टांत बन जांदे ने चार लैणा ने ते अठ ओहदे दृष्टांत बन जांदे ने पहले दृष्टांत विच एक कीड़ी दा दृष्टांत है ते कीड़ी दे नाल एक पंछी दा दृष्टांत दे दिता जे हुण दसो कीड़ी ते पंछी दा मुकाबला की होवेगा दूसरे बोल विच एक लकीर ते गड्डी चलदी है उह ते लैण वाइज चलेगी पर जिहड़ा तेज रफ्तार वाला घोड़ा होवे उह भावें सज्जे होवे भावें खब्बे होवे हुण जिहड़ी छोटी गड्ड है बैल वाली गड्ड है उहदा ते घोड़े दा मुकाबला नहीं हो सकता कीड़ी ते पंछी दा मुकाबला नहीं हो सकता जिवें कोई पैदल तुरन वाला होवे ते जिहड़ा मन है उह अंत विच भाई साहिब जी कहिंदे ने पैदल तुरन वाला किन्ना क तुर लवेगा कोई किलोमीटर कोई दो किलोमीटर कोई ज्यादा ही तुरन वाले पांच छे किलोमीटर तुर लैंदे ने फिर बस हो जांदी है पर जिहड़ा मन है अज भाई गुरदास साहिब जी कहिंदे उह कदे भी नहीं ठहरदा उहदा मुकाबला ना ते तुरन वाला ही ते ना पंछी कोई भी नहीं कर सकदा उह छिण दे विच किथे दे किथे पहुंचदा है जिवें भाई गुरदास साहिब जी ने कबित कलम बंद कीता है आओ सांझा करिए जी एक बार प्यार विच आखो जरूर सतनाम श्री फिर बोलो जतन करो बुलंद आवाज विच कठे बोलियो सत

हारिया बख्श ले पुल पुला बख्शन, हारिया बख्श ले पुल पुला पुलन, हार दे चल।

तेरी जनक तेरी जन कर हर पूजा जी तपता पै जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर साध जी कर गिरिया खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अंबर करता जी तू जे वड़ियाव न को तू जो जो एको सदा सदा तू एको जी तू निचर करता सोई तू आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तू दियापे सिट सब उपाय जी तू दियापे सिट सब गोई जन नान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियान मैडा साई जो तू पावे सोई तिसी जो तू दे सोई हूं पाई रहा सब तेरी तो सबनी त्याया जिसनो कृपा कर तिन्ना रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तो आप छोड़िया आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ में दूजा कोई ना है जियो जंत सब तेरा खेला विजोल मिल विछड़िया संजोगी मेला जिसनों तू जाना है सोई जन जाना है हर गुण सदिया वखाना जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया

कहो नानक अमनी जगरम्मा शरण परे की राखो शर्मा। कबियो बाज बेंती चौबई हमरी करो हादर चा पूर्ण होए चिदगी इच्छा। तब चरण बन रहे हमारा अपना जान करो बरतबारा। हमरे दुस्सवे तू का वह आप हाथ दे मोहि बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा शिव से सब करतारा। मोर चनिज कर दया करिया सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण हो हमारिया सा तोर बंधन की दया प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अब न ध्यान जो बचाओ सो तुम दे पाओ। सेवा सिख हमारे तारी है जो जो सतना मारे मारी है। आ बहादे मुझे बरिया मन का त्रास निवरिया। फुजो सदा मारे पच्चा श्री अस तो जो करो रचा। राख लियो मोरा कन्हारे साहेब संत साहे प्यारे। दीन बंदा दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए सिजो अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन का सलो सवारा नमस्कार है ताई हमारा। जवन का सजत बनायो देव दै जचन बुझायो। आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकुण को सगुण सुख दियो सतन को बल मोहम्मद कियो। घट घट के अंतर की जानता भले बुरे की पीर पछाणता। चिंटी दे कुंज रसूला सबर के बाद इसका फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पी पहचाना कट कट के पटपट की जाना। जब्द कर करा कर तारा प्रजा तत्तम दे अपारा। जब आकर करत हूँ कब हो तुम्हें मिलत दे दर सब हो। जेते बदन शिष्य तारा आप अपनी बूझ उचार। तुम सभी दे रहते निरालम जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीद अनाद सांब। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न बावत बेदा। ताको कर बहान अनुमानता मां मूल कछ भेद न जानता। मां देखो कैसदा शिव ननकार का चिंतन भेव। आप अपनी बुद्धि जती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखन जाए बसारा के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुप स्वरूपा रंग पयो राव की पूपा।
अंडा जेरा सदकनी उत्पज खान बोरज दिनी कौं पूरा जावे बैठा कौं सिमट पे शंकर इकैटा सीधी शिष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्यंपव अब्रचा मेरी तुम करो सिख उबार ऐसे खसंग्रह दुष्ट जिते उठो तो पाता सगल मनीष करो रन काता जिया तो सन्नी परे तिनके दुष्ट दुख हवे मरे पुरख जन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बात त्याए हैं ताके कार निने आए हैं रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरि टरे तत्काला कृपा दितन जाए निहरो ताके ताव तनक मोहरो रिद सदगर्मो सब हो दुष्ट शास सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

तेरा खड़क केत में शरण त्यारी आब आदे लियो बारी सर्व ठोर मोहो साई दुष्ट लोग ते लियो बिचाई सवैया पाए गए जबते तुमरे तबते कुंवा तरे नियानियो राम रही पुराण कुरान अनेक है मते गना मानियो सिमरत सातर बेद सब बेद कह हम एक ना जानियो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बकानियो दोरा सगल द्वार को चाड़ गए।

सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाई गए की लाज स गोविंद दास तुहार, राम कली मल्ला तिजानंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर तैं पाया, सहज से ती मन बजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावनी आइया, शब्दों ते गावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले, हरना रहो तू मन मेरे दू सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावै, सदा सिरसला तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनके मन वसिया वाजी शब्द कनेरे, कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुखमुनिया वसिया, जिन इच्छा सब बुझाइया सदा गुरबान किता गुरविट हो, जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संत हो, सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दोत वास कीते काल कंटक मारिया, तुरकरम पाया तो जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख होवा तित कर आनंद वाजे, आनंद सुनो वड बागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बिसूरे, दुख रो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भै ससे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवैता सदगुर या पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजी अनंत तूरे।

कहो जिसका सबसे आधार जे को कावे जे को पहुंचाए तिसका होए उदार यह वास्ता तजी न जाई नित नित रख उतार तम संस्था

जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवां मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख